0: इस प्रोग्राम में अपने अजीज भाइयों इस्लामी जम्हूरिया ईरान के पुलिस और इंतज़ामी अमले की खिदमत में हैं,
1: जो अपनी मसरूफियात के बावजूद यहाँ तशरीफ़ लाए। हम वाकई बहुत खुश हैं कि आप सब इस महफिल में मौजूद हैं। हमें आप पर फ़ख्र है। गर्मी हो या सर्दी, दिन हो या रात, आप पब्लिक की खिदमत में मसरूफ़ रहते हैं। जो भी इश्क और खलूस से लोगों की खिदमत करता है, यकीनन अल्लाह के नज़दीक माजूर है। ज़ोरदार तालियों की ये दरख्वास्त है। और अब पेशे खिदमत हैं नौजवान कारी और हाफिज़े कुल कुरान, एक कुरानी खानवादे से ताल्लुक़ रखने वाले जनाब मसूद सयाफ़ज़ादे का इस्तकबाल कीजिए। बिस्मिल्लाह जनाब मसूद, ज़रा सलाम दुआ कर लीजिए।
2: बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अदब व एहतराम के साथ सलाम अर्ज करता हूँ असाध्जा कराम, हाज़रीन ग्रामी, पुलिस के मुअज़्ज़ज़ अफसरान और दुनिया भर में हमें देखने वाले नाज़रीन की खिदमत में।
0: बहुत जिंदा और सलामत रहें। जिंदा और सलामत,
2: बहुत शुक्रिया।
0: तो आइए सीधे चलते हैं तिलावत की तरफ। क़ारिया मुमताज़ जनाब मसूद सयाफ़ज़ादे की खूबसूरत तिलावत है। यह भी बताता चलूँ कि जनाब मसूद सयाफ़ज़ादे ने लॉ की तालीम हासिल की है और अब जज के मनसब पर फायज़ हैं। इनके वालिदे मोहतरम और चचा दोनों मुल्क के मारूफ कुर्रा में से।
3: चचा भी?
0: जी, अल्लाह सबको सलामत रखे।
4: यानी जज हैं या?
0: जी जज है।
3: ये तस्वीर इसीलिए लगी।
4: अगर कोई मुश्किल हो तो यहाँ हल कराई जा सकती है।
0: नहीं, पार्टीबाजी नहीं चलती।
4: ओके
0: बिस्मिल्लाह जनाब।

वो जो पैमाने के नीचे बच जाता है वही तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है। जानते हैं आप हजरत, इमाम जमाना की सिफात में से सबसे ज्यादा दोहराई जाने वाली सिफत अदल है, और उस अदल का सबसे नुमाया पहलू इक्तसादी अदल है। जब इमाम मेहदी तशरीफ लाएंगे तो सबसे पहले यही इंसाफ, यही माआशी अदल कायम करेंगे। बकियतुल्लाह खैरुल्लकुम इन कुंतुम मुमिनीन वमा अना अलैकुम बिहफीज।

आओ ये जमीन ले लो, महंगे इलाके में ले लो, हमारे साथ रहो, हमारे लिए काम करो। तुम अच्छी बातें कर लेते हो, तबलीग कर लेते हो, बातचीत का सलीका आता है, लो ये महंगी जमीन ले लो और हमारे साथ आ जाओ। मगर शुएब ने जवाब दिया, वमा उरीदु अन उखालिफकुम इला मा अनहाकुम अन, जिस चीज से मैं तुम्हें रोक रहा हूं वही खुद करूं, हरगिज ऐसा नहीं कर सकता। इन उरीदु इल्ला इस्लाह मस्ततअतु, जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं इस्लाह की कोशिश करूंगा, ना ये कि पूरी दुनिया को सुधार दूंगा, मगर मैं अपना फरीजा जरूर निभाऊंगा। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब, तौफीक देने वाला भी अल्लाह है।

0: जहां भी हम हैं, इक्तसादी करप्शन ऐसी चीज है कि अगर ये कल्चर बन जाए, आदत हो जाए, अगर ये सिस्टमेटिक हो जाए, अगर बैंक रिबा लेने लगे और ये फिर ये सिस्टम में सरायत कर जाए, तो फिर अल्लाह उस कौम को नीस्तो नाबूद कर देता है, अल्लाह उस कौम को बर्बाद कर देता है। सलावात।
1: ودوا لو تدهن فيدهنون.

0: प्रोग्राम में अपने अजीज भाइयों इस्लामी जम्हूरिया ईरान के पुलिस और इंतज़ामी अमले की खिदमत में हैं,
1: जो अपनी मसरूफियात के बावजूद यहाँ तशरीफ़ लाए। हम वाकई बहुत खुश हैं कि आप सब इस महफिल में मौजूद हैं। हमें आप पर फ़ख्र है। गर्मी हो या सर्दी, दिन हो या रात, आप पब्लिक की खिदमत में मसरूफ़ रहते हैं। जो भी इश्क और खलूस से लोगों की खिदमत करता है, यकीनन अल्लाह के नज़दीक माजूर है। ज़ोरदार तालियों की ये दरख्वास्त है। और अब पेश खिदमत है नौजवान कारी और हाफिज़े कुल कुरान, एक कुरानी खानवादे से ताल्लुक़ रखने वाले जनाब मसूद सयाफ़ज़ादे का इस्तकबाल कीजिए। बिस्मिल्लाह जनाब मसूद, ज़रा सलाम दुआ कर लीजिए।
2: बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अदब व एहतराम के साथ सलाम अर्ज़ करता हूँ असाज़ा कराम, हाज़रीन ग्रामी, पुलिस के मुअज़्ज़ज़ अफसरान और दुनिया भर में हमें देखने वाले नाज़रीन की खिदमत में।
0: बहुत जिंदा सलामत रहें, जिंदा सलामत,
2: बहुत शुक्रिया।
0: तो आइए सीधे चलते हैं तिलावत की तरफ। क़ारिया मुमताज़ जनाब मसूद सयाफ़ज़ादे की खूबसूरत तिलावत है। यह भी बताता चलूँ कि जनाब मसूद सयाफ़ज़ादे ने लॉ की तालीम हासिल की है और अब जज के मनसब पर फायज़ हैं। इनके वालिदे मोहतरम और चचा दोनों मुल्क के मारूफ कुर्रा में से हैं।
3: चचा भी?
0: जी, अल्लाह सबको सलामत रखे।
4: यानी जज हैं या?
0: जी जज है।
3: ये तस्वीर इसीलिए लगी,
4: अगर कोई मुश्किल हो तो यहाँ हल कराई जा सकती है।
0: नहीं, पार्टीबाजी नहीं चलती।
4: ओके।
0: बिस्मिल्लाह जनाब।

0: चाहते हैं, हम आपको बैठने ही नहीं
1: अगर
0: देंगे।
1: किसी को साथ ले जाना भी चाहते हैं तो भी हर्ज नहीं
0: जी, मुश्किल नहीं। आइए
2: यहाँ आगा कासमियान को खुश आमदीद कहें।
3: अस्सलामुअलैकुम। आप खैरियत से हैं?
4: जी अल्हम्दुलिल्लाह।
2: तशरीफ रखें जनाब सैयदजादे।
3: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्ज़ करूँ कि कुछ अहम डॉक्यूमेंट्रीज महफिल प्रोग्राम की जानिब से कुछ डॉक्यूमेंट्री की सूरत में और कुछ एनिमेशन के अंदाज में तैयार की गई हैं, इंशाल्लाह जल्द ही नशर होंगी। मैं खुद भी रावी हूँ इन दास्तानों का, साथ ही कुछ पॉडकास्ट भी बने हैं जिनमें हामिद शाकिर निजात साहब ने तलावत की है बहुत ही दिलकश अंदाज में। मुफीद साबित होंगी इंशाल्लाह, खास तौर पर उनके लिए जो अंबिया के किस्से सुनना चाहते हैं। एक बार दुरूद पढ़ दीजिए आप हजरत। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम अलमबरदार थे इक्तिसादी बदउनवानियों से मुकाबला करने में। कुरान में आया है, वला तुतु सफहा अमवालकुम अल्लती जअलल्लाहु लकुम क़ियामा। माल वो बुनियाद है जिस पर माशरा खड़ा होता है। जब यही निज़ाम बिगड़ जाए, जब माली बदउनवानी आम हो जाए, तो फिर समाज की कमर टूट जाती है। अगर फसाद सिर्फ फर्दी सतह पे हो, जैसे नाप तौल में कमी या थोड़ी सी बददियानती, तब इस्लाम मुमकिन है। लेकिन अगर खुदा नखास्ता यही चीज़ें कल्चर बन जाएं, जब ये बुराइयां सिस्टम का हिस्सा बन जाएं, तो यही तबाही की शुरुआत होती है, फिर समाज की कमर टूट जाती है। इसलिए कुरान कहता है, वला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिलबातिल व तुदलू बिहा इलल हुक्काम लिताकुलू फरीकम मिन अमवालिन नास बिलइस्म व अंतुम तअलमून। यानी एक दूसरे का माल नाजायज तरीके से मत खाओ। कैसे? सिस्टमैटिक। व तुदलू बिहा इलल हुक्काम, पूरे सिस्टम की बात है, यानी जब रिश्वत हाकिम को दी जाने लगे तो फिर करप्शन ऊपर से नीचे आता है, दानिस्ता तौर पर लोगों का हक खाने लगे।

0: skin.
1: वो जो पैमाने के नीचे बच जाता है वही तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है। जानते हैं आप हजरत, इमाम जमाना की सिफात में से सबसे ज्यादा दोहराई जाने वाली सिफत अदल है, और उस अदल का सबसे नुमाया पहलू इक्तिसादी अदल है। जब इमाम मेहदी तशरीफ लाएंगे तो सबसे पहले यही इंसाफ, यही माशी अदल कायम करेंगे। बकियतुल्लाह खैरुल्लकुम इन कुंतुम मुमिनीन वमा अना अलैकुम बिहफीज़।

0: وما أنت علينا بعزيز.
1: ये तो ऐसे लोग नहीं है कि तुम कहो लरजमनाक तो फौरन आकर बोले चलो बात कर लेते हैं, चलो गुफ्तगु कर लेते हैं, चलो समझौता कर लेते हैं. लव तुधिनु फयुधिनून वद्दु लव तुधिनु फयुधिनून. पैगंबर वो दरअसल ये चाहते हैं कि तुम नर्म पड़ जाओ, तुम झुक जाओ, उनकी बात मान लो. हरगिज वो चाहते हैं कि तुम आंखें बंद करके गुजर जाओ कि तुमने कुछ देखा ही नहीं, बस समझौता कर लो सब ठीक. लेकिन समझौता न करना, मजबूती से खड़े रहना. लिहाजा शुएब ने इक्तदार से कहा वया कौम अमलू अला मकानतकुम इन्नी आमिल. तुम अपनी जगह डटे रहो, मैं भी अपनी जगह डटा रहूंगा. सौफा तअलमूना मन यातीहि अज़ाबुन युख्ज़ीह वमन हुवा काज़िब वरतक़िबु इन्नी मअकुम रक़ीब. सब्र करो, तुम भी मुंतजर हो, हम भी मुंतजर हैं, देखते हैं अज़ाब किस पर नाजिल होता है. लेकिन मैं अपनी जगह खड़ा हूँ. वया कौम अमलू अला

0: जहां भी हम हैं, इक्तसादी करप्शन ऐसी चीज है कि अगर ये कल्चर बन जाए, आदत हो जाए, अगर ये सिस्टमेटिक हो जाए, अगर बैंक रिबा लेने लगे और ये फिर ये सिस्टम में सरायत कर जाए, तो फिर अल्लाह उस कौम को नीस्तो नाबूद कर देता है, अल्लाह उस कौम को बर्बाद कर देता है। सलावात।
1: وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ